0: फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ साथ सीनियर फौजी अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने भी किया। पाकिस्तान अपने मुसल्ला अफवाज को जदीद बनाने और दिफाई सलाहियतों को मजबूत बनाने की कोशिशों के तहत अपने मकामी तौर पर तैयार करदा मिज़ाइल प्रोग्राम को वसअत दे रहा है, जिसमें फतह सीरीज दुरुस्त निशाना बनाने वाले हथियारों के बढ़ते हुए जखीरे का एक अहम हिस्सा है।
1: यमन के हूसियों ने आज बरोज़बुध अलल सुबह जारी करदा बयान में कहा है कि हमने सऊदी अरब के हवाई अड्डों और फौजी तनसीबात को निशाना बनाकर मुतअद्दिद ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए हैं। हूसियों के फौजी तर्जुमान याहया सरी ने सोशल मीडिया एक्स से जारी करदा बयान में कहा है कि इनकी अफवाज ने मुतअद्दिद ड्रोनों के साथ रियाज के किंग खालिद बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे को निशाना बनाया है। हमला ठीक निशाने पर किया गया और इसके नतीजे में हवाई अड्डे पर फजाई ट्रैफिक मुतासर हुई है। सरी ने मजीद कहा है कि हूसी फौज ने बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोनों के जरिए एबहा बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे और खमीस मशीद एयरबेस को निशाना बनाने के लिए दो कार्रवाइयां की। इन हमलों से हवाई अड्डे पर फजाई ट्रैफिक मुतासर हुई और फौजी अड्डे को नुकसान पहुंचा है। सरी ने एक अलग बयान में कहा है कि हूसियों ने जीजान में दगरीर, असीर में अकीफा और दोबारा जीजान में अल मौसम के फौजी कैंपों को मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोनों के जरिए निशाना बनाया है। दूसरी जानब सऊदी जेर क़यादत इत्तेहाद ने बुध के रोज जारी करदा बयान में कहा है कि हूसियों की जानब से रियाज की तरफ दागा गया एक बैलिस्टिक मिसाइल फजा में तबाह कर दिया गया है। इत्तेहाद के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल तुर्की अल मालिकी ने एक्स प्लेटफॉर्म से जारी करदा बयान में कहा है कि दहशतगर्द हूसी मलेशिया की जानब से दागे गए मिसाइल को रियाज के शुमाल में रोक लिया गया है।
0: अमरीकी नायब सदर जे डी वेंस ने कहा है कि ईरान को अमरीकी मुतालबात को पूरा करने और मुल्की 7 माह से जारी जंग को ख़त्म करने के लिए अपनी जौहरी अफजूदगी की सलाहियत में नुमाया कमी करना होगी, जबकि वाशिंगटन इस बात से गैर यकीनी का शिकार है कि तेहरान मुज़ाकरात में फैसले किस तरह करता है। वेंस ने कहा कि अगर आप जौहरी हथियार नहीं चाहते तो आपको 60% अफजूदा ईंधन की क्या ज़रूरत है, और अगर आप जौहरी हथियार ना बनाने के अज़्म का इजहार करना चाहते हैं तो इंतहाई अफजूदा ईंधन तैयार ना करें। उन्होंने मजीद कहा कि मेरा ख्याल है कि अगर वो जौहरी हथियार ना बनाने का अज़म दिखाना चाहते हैं तो उन्हें अपनी अफजूदगी की सलाहियत के हवाले से कोई ठोस और नुमाया इकदाम करना होगा। वेंस ने कहा कि वाशिंगटन को इस बात का यकीन नहीं है कि तेहरान में कौन फैसले करता है। अमरीकी नायब सदर ने कहा कि वाइट हाउस ईरानी सदर मसूद पेजिश्कियान और वजीर खारजा अब्बास अराकची के साथ बातचीत कर रहा था। वेंस ने यह भी कहा कि एक बात जो हमें नज़र आई है वो ये है कि यह बिल्कुल वाज़ह नहीं है कि उनका मुल्क कैसे फैसले करता है। दूसरी जानब ट्रंप ने भी अपने बयान में कहा कि उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि कोई नहीं जानता कि ईरान के मुल्की निज़ाम को कौन चला रहा है।
1: मकबूजा मगरबी किनारे और फलस्तीनी शहरियों और फ़राइज की अंजामदही में मसरूफ़ सहाफ़ियों को इसराइली आबादकारों के तशद्दुद का मुसलसल सामना करना पड़ रहा है। जैतून की चुनाई के मौसम के दौरान बढ़ती हुई कशीदगी की कवरेज करने वाले फ्रांसीसी खबर रसां इदारे AFP के सीनियर फोटोग्राफर जाफर इश्तिया पर मुसल्ला आबादकारों ने वहशियाना तशद्दुद किया। अकरबा गाँव के करीब पेश आने वाले इस वाक़े में 58 साल जाफर इश्तिया को इस वक्त दो हमलावरों ने निशाना बनाया जब वो अपनी गाड़ी में सवार होने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर वाज़ेह तौर पर प्रेस लिखा हुआ था। राइफल के बटों के वार से सीनियर सहाफी के सर और जिस्म पर जख्म आए, जबकि इनका कैमरा और दीगर सामान भी छीन लिया गया। इस रुसवाई का सबसे नुमाया पहलू यह था कि वहां मौजूद लगभग एक दर्जन इसराइली फौजियों ने इस हमले को रोकने के लिए किसी किस्म की मुदाखलत नहीं की। नापलस के एक अस्पताल में मुंतकिल किए जाने वाले जाफर इश्तिया के बारे में मालूम हुआ है कि इन्हें 24 घंटे तक तिब्बी निगरानी में रखा जाएगा। AFP के ग्लोबल न्यूज डायरेक्टर फिल चेटविंट और फॉरेन प्रेस एसोसिएशन ने सख्त बयान के जरिए इस हमले की मजम्मत की और फौजियों की आंखों के सामने होने वाले इस पुरतशद्दुद वाक़े की फौरी और जामे तहकीकात का मुतालबा किया है।

0: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: फ्रांस में आज होने वाले फलस्तीन के हक में एक बड़े यकजहती मुजाहरे पर सरकारी तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई। अर्जेंस फलस्तीन नामी तंजीम की कॉल पर पेरिस में होने वाले इस मार्च, जिसका मकसद गजा में जारी नस्लकुशी की तरफ तवज्जो मबजूल कराना था, पेरिस पुलिस हेडक्वार्टर्स ने इजाजत देने से इनकार कर दिया। वजीर दाखिला लॉरेन नुनेस की हिदायत पर लिए गए इस पाबंदी के फैसले में यह दावा किया गया है कि दहशतगर्दी के बढ़ते हुए खतरात और एंटी सेमेटिक कार्रवाइयों में इजाफे की वजह से यह मुजाहरा अवामी नज्म व ज़ब्त के लिए शदीद खतरात का बायस बन सकता है। फ्रांसीसी हुकूमत के इस फैसले पर बैन अल-अक़वामी इंसानी हकूक की तंजीमों की जानिब से शदीद रद्द अमल और तनकीद देखने में आई है। गजा पर इसराइल के हमलों को 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं और नुकसान की तफसीलात मुसलसल संगीन होती जा रही हैं। ताज़ा तरीन आदाद व शुमार के मुताबिक खत्ते में जंगबंदी के खात्मे के बाद से अब तक होने वाले हमलों में 1460 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि अक्टूबर 2023 से अब तक मजमू जानी नुकसान 74,200 से तजावज़ कर चुका है।
2: फ्रांस के रुकन यूरोपीय पार्लियामेंट रीमा हसन ने स्टार्सबर्ग में यूरोपीय पार्लियामेंट के अंदर एक इसराइली झंडा हटा दिया और कहा है कि इनका यह अमल गजा में जारी नस्लकुशी बैन अल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जियों और इदारा जाति दोहरे मेयार के खिलाफ बराह रास्त एहतजाज है। ये वाकया सोमवार को इस वक्त पेश आया जब एक गैर सरकारी तकरीब, जिसका अहतमाम इसराइल के सफारती नुमाइंदे और अमरीकन जोश कमेटी के तआवुन से किया गया था, इस दौरान पेश आया। हसन ने नोट किया है कि महफिल में पेश करदा जेवरात पर इसराइल को पूरे गजा और मकबूजा मगरबी किनारे पर मुहित दिखाने वाले नक्शे कुंदा थे, जो कि यूरोपीय यूनियन के कायम करदा सफारती ढांचे की खिलाफ वर्जी है। हसन ने वजाहत की है कि उन्होंने ये कार्रवाई इस वक्त की जब इसराइली फनकार यारून बाब ने बातचीत के दौरान फलस्तीनी कौम के वजूद को मुस्तरद करते हुए कहा कि फलस्तीन का कोई वजूद नहीं, यह महज एक वहम है, जैसा कि सींगों वाला घोड़ा, ना कोई फलस्तीनी बनाकजीन है ना ही फलस्तीन।
1: इसराइल की मरकजी इंतखाबी कमेटी ने नेतन्याहू को दूसरी मरतबा हिदायत की है कि वो कमेटी की तरफ से इंतखाबी मुहिम का हिस्सा करार दी गई वीडियो को अपने जाती सोशल मीडिया अकाउंटों से हजफ करे और कानूनी मसारिफ भी अदा करे। इसराइल के चैनल 7 टेलीविजन की मंगल को नशर करता खबर के मुताबिक कमेटी के चेयरमैन और सुप्रीम कोर्ट के जज नॉम सॉलबर्ग ने नेतन्याहू को तलनौफ एयरबेस पर बनाई गई वीडियो हजफ करने और 2,500 शिकेल तकरीबन $821 के मसारिफ अदा करने की हिदायत की है। सॉलबर्ग ने फैसला सुनाया है कि वीडियो की नेतन्याहू के जाती सोशल मीडिया अकाउंटों पर इशात इंतखाबी कानून की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि इसमें एक फौजी अड्डे और इसराइली फिजाइया के एक तैयारे समेत अवामी वसाइल का इस्तेमाल किया गया है। नेतन्याहू ने मजकूरा वीडियो के जिसके पस मंजर में इसराइली फिजाइया का एक तैयारा भी नजर आ रहा था 29 सितंबर को शेयर की थी। इसराइली नशरियाती इदारे चैनल 15 के मुताबिक जज ने खबरदार किया है कि ऐसे इशारे मौजूद हैं कि दुश्मन इंतखाबात से कबल इसराइल पर हमला करने की कोशिश करेंगे। यह ताज़ा फैसला सॉलबर्ग की जानब से इतवार के रोज़ 5 अलग अलग दरख्वास्तों पर सुनाए गए फैसले के बाद सामने आया है। इन दरख्वास्तों में नेतन्याहू की जानब से अपने ज़ाती अकाउंटों पर इंतखाबी मुहिम के ज़ेर मकसद सरकारी तकरीरों और फौजी अनासर का इस्तेमाल किए जाने से मुतालिक एतराज़ात उठाए गए थे। इन दरख्वास्तों में से एक ऐसी वीडियो भी शामिल थी जो नेतन्याहू के जनूबी लुबनान में एक इसराइली फौजी चौकी के दौरे के दौरान बनाई गई थी।
2: मिस्र के सदर अब्दुल फत्ता अल सीसी आज बरोज बुध 3 रोज़ा सरकारी दौरों के पहले मरहले में जनूबी कोरिया पहुंच गए हैं। जनूबी कोरिया में अपनी सरकारी मसरूफियात के दौरान वो सदर ली जे म्यूंग के साथ सरबराही सतह के मुजाकरात करेंगे। मिस्र ईवाने सदर के मुताबिक अल सीसी ने दौरा एशिया के पहले मरहले में सियोल एयरबेस पर लैंड किया। दौरे के अगले मरहले में वो मलाशिया और इंडोनेशिया जाएंगे। जनूबी कोरिया की खबर एजेंसी योनहाप ने जनूबी कोरिया के सदारती दफ्तर के हवाले से कहा है कि मिस्र के सदर को इस दौरे की दावत सदर ली जे म्यूंग ने दी थी और दोनों रहनुमाओं की मुलाकात जुमेरात को मुतवक्को है। तवक्को है कि मुजाकरात में तजारत, सरमायाकारी, बुनियादी ढांचे और रस्ती संजीर समेत शोबा इक्तसादियात में तावुन और दोतरफा अवामी रवाबत को फरोग देने के पहलुओं पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। जनूबी कोरिया के सदारती तर्जमान कांग शू च्यूंग ने कहा है कि इलाकाई सियासी पेशरफ और दीगर बैन अल-अक़वामी अमूर भी मुजाकरात के एजेंडे में शामिल होंगे।
1: यूक्रेनी सदर व्लादिमिर ज़ेलेंस्की ने गुज़श्ता रोज़ कहा है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है और उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि फिजाई हमले के इंतबाहात पर कान धरें। ज़ेलेंस्की ने अपने शाम के खिताब में कहा कि हुकाम को इस हमले की तैयारियों के बारे में ताज़ा तरीन इंटेलिजेंस मालूमात मौसूल हुई हैं और फिजाई और दीगर सर्विसेज जवाब देने के लिए तैयार हैं। انہوں نے کہا کہ اب یہ ہمارے شراکت داروں پر منحصر ہے جب دنیا کے ہر اس ملک پر جس کے پاس وہ دفاعی صلاحیتیں ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے اور وہ ہمیں فراہم کر سکتے ہیں۔ روس کی وزارت خارجہ نے گزشتہ ہفتے غیر ملکیوں پر زور دیا تھا کہ وہ کیف چھوڑ دیں اور یوکرین کا سفر کرنے سے گریز کریں۔ وزارت نے کہا کہ ماسکو کیف اور دیگر یوکرینی شہروں میں فوجی اہداف کے خلاف بڑے پیمانے پر جوابی حملے جاری رکھے گا۔ وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ یہ حملے روسی سویلین آبادی اور بنیادی ڈھانچے کے خلاف یوکرینی افواج کی دہشت گردانہ کارروائیوں کے جواب میں ہیں۔ پیر کے روز کرملن کے ترجمان دمیتری پاسکاف نے کیف پر روس کی سویلین معیشت پر حملے بڑھانے کا الزام لگایا اور اس بات پر زور دیا کہ روس یوکرین کے خلاف جوابی حملے کر رہا ہے۔ پاسکاف نے کہا کہ ہماری مسلح افواج اب جو کچھ کر رہی ہے وہ اسی کا بدلہ ہے۔
2: لیونل میسی نے اپنے جرسی میں اپنے خاص شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، جہاں ارجنٹائن کے کپتان نے بینین کے خلاف دوستانہ میچ میں 0-3 سے فتح کے دوران ایک گول اسکور کیا اور دو گولوں میں مدد فراہم کر کے اپنے 21 سالہ شاندار بین الاقوامی کیریئر کا اختتام کر دیا ہے۔ منگل کے روز کھچا کھچ بھرے

पहला MRI सपोर्टेड क्राय ओब्लिशन सिस्टम आवाम के लिए शुरू कर दिया है। आम जबान में जिसे ट्यूमर मुंजमित करना कहा जाता है, तिब्बी लिटरेचर में इसका नाम क्रायो ओब्लिशन है। इस बार ये अमल MRI की मदद से अंजाम दिया जा रहा है। इंटरनेशनल रेडियोलॉजी के माहिरीन हालिया बरसों में जिस तरीक़ाकार पर कामयाबी से काम कर रहे हैं, उसका मकसद कैंसर ज़दा खुलियात को जलाना या काट कर निकालना नहीं, बल्कि लफ्जी मायने में मुंजमित करके ख़त्म करना है। तो फिर एक ट्यूमर को कैसे मुंजमित किया जाता है, आइए पहले इस टेक्नोलॉजी को थोड़ा गहराई से समझते हैं और इस इख्तरा के पर्दे के पीछे एक साथ मिलकर देखते हैं। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की सोसाइटीज़ और बैनुल अक़वामी तिब्बी ज़राए के मुताबिक ये अमल एक इंतहाई बारीक इंजीनियरिंग और तिब के बाहमी तआवुन पर मबनी है। ऑपरेशन थिएटर में बड़े ज़ख्म नहीं लगाए जाते, डॉक्टर अल्ट्रासाउंड या CT स्कैन के जरिए ट्यूमर की जगह का तयन करते हैं। इसके बाद आपके जिल्द पर सिर्फ एक सुई जितना छोटा सुराख करके क्रायोप्रॉब नामी खसूसी सुइयों के जरिए बराह रास्त कैंसर ज़दा बाफ्तों के मरकज़ तक पहुँचते हैं। जादू ठीक उसी नुक्ते पर शुरू होता है। सुइयों के अंदर से ऑर्गन गैस या माया नाइट्रोजन गुजारी जाती है। जब गैस का दबाव अचानक गिरता है तो सुई की नोक पर -40 से -140 डिग्री तक पहुंचने वाला एक इंतहाई सर्द बर्फ का गोला बन जाता है। जब कैंसर के खुलियात इस शदीद जमाने वाली सर्दी का शिकार होते हैं तो उनके अंदर मौजूद पानी के मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल बन जाते हैं और खुलियात की झिल्ली फट जाती है। इसके बाद हल्का सा पिघलाने के अदवार लागू करके ट्यूमर की रगों का ढांचा तबाह कर दिया जाता है, जिससे उसकी ग़िज़ा बंद हो जाती है। अपना काम मुकम्मल करने के बाद हमारा मुदाफियती निज़ाम वक्त के साथ साथ इस मुर्दा बाफ्त को खुद ब खुद साफ कर देता है। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया की उस असल और धमाकेदार जिद्दत की तरफ। ये अमल अब MRI मशीन के अंदर MRI इमेजिंग की लाइव निगरानी में किया जा सकता है। MRI स्कैनर इस अमल को स्क्रीन पर लाइव देखने की सहूलत फराहम करता है। इससे ये यकीनी बनता है कि मुंजमित करने की हदूद बिल्कुल दुरुस्त हों और सेहतमंद बाफ्ते महफूज रहें। डॉक्टर अब बर्फ के गोले की हदूद को ज्यादा वाज़े तौर पर देख सकते हैं और वो रीढ़ की हड्डी, आसाब, गुर्दे या जिगर जैसे हसास हिस्सों पर ज्यादा तहफ्फुज के साथ काम कर सकते हैं। सिडनी के लिवरपूल हॉस्पिटल ने मुल्क भर में पहला एडवांस्ड MRI गाइडेड क्रायो ओब्लिशन सिस्टम नस्ब करके उसका अवामी ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलिया ने हालिया दिनों में इस मौजू पर अपना नाम खूब रोशन किया है। सेहत के हुकाम का कहना है कि ये तरीक़ाकार खासतौर पर इब्तदाई मरहले के गुर्दे और छाती के कैंसर और इसके साथ साथ हड्डियों, नरम बाफ्तों और जिगर के ट्यूमर में बेहतरीन नतायज दे रहा है। तो फिर इस टेक्नोलॉजी को रिवायती सर्जरी से अलग करने वाला सबसे बड़ा फायदा क्या है? यकीनन इसका मिनिमल इन्विजिव होना है, यानी जिस्म को कम से कम नुकसान पहुंचाने वाला तरीका होना। ना कोई बड़ा चाकू का निशान और ना ही दिनों तक रहने वाला दर्द। यह अमल तमाम तौर पर लोकल एनेस्थीजिया या हल्की बेहोशी के तहत तकरीबन 1 से 2 घंटे में मुकम्मल हो जाता है। मरीज उसी दिन अपने घर लौट सकता है और सिर्फ चंद दिनों में अपनी मामूल की जिंदगी पर वापस आ सकता है। खास तौर पर बड़ी उम्र के मरीजों के लिए जो भारी और बड़े ऑपरेशन बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये टेक्नोलॉजी गोया जिंदगी बचाने वाले एक पुल का काम करती है। ये सेहतमंद आज़ा की बाफ्तों को महफूज रखते हुए सिर्फ निशाने पर मौजूद ट्यूमर को ख़त्म करती है। मजीद ये कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया तक महदूद नहीं है, FDA समेत दुनिया के कई बड़े इदारों से मंजूरी हासिल करने वाला ये तरीक़ाकार यूरोपीय ममालिक, स्विट्ज़रलैंड और यहाँ तुर्की के अस्पतालों में भी कामयाबी से इस्तेमाल हो रहा है। तिब्बी दुनिया में ये जमा देने वाली लेकिन एक ही वक्त में हमारे दिलों को गरमाने वाली तरक्की इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि मुस्तकबिल में कैंसर का इलाज बहुत ज्यादा बेदर्द और काबिल रसाई होगा। हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल खुदा हाफिज़।